0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रम् अद्यारभ्य अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांक पर्यन्तं प्रचलिष्यति। पञ्चविंशति दिनानां सत्रेऽस्मिन् एकोनविंशति उपवेशनानि भविष्यन्ति। सत्रे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चायै अंगीकरणाय च उपस्थापितानि भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। अद्य लोकसभायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20-26, राज्यसभायां च राष्ट्रिय सम्मानस्य अपमान निवारणस्य संशोधन विधेयकं 20-26 उपस्थाप्येते। सहैव जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकं, आयकर संशोधन विधेयकं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयकं 20-26 चेत्येतानि अपि प्रावृट सत्रेऽस्मिन् उपस्थापितानि भविष्यन्ति। प्रावृट सत्रस्य पूर्वसंध्यायां ह्यः सर्वकारेण संसद भवने सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतम्। सम्मेलनस्य अध्यक्षः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः आसीत्। अस्यां सभायां 40 राजनैतिक दलानां 50-tops नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुख विषयेषु रचनात्मक चर्चासु भाग ग्रहीतुं च आग्रहम् अकरोत्।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
0: लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः ह्यः लोकसभायाः व्यापार परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां सर्वकारस्य प्रतिनिधि सदस्याः अपि च विभिन्नानां राजनैतिक दलानां च सदस्याः सत्रावधौ प्रस्तावितस्य विधेयकेषु अन्येषु च कार्येषु विचारान्

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्ति

0: दावे पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी इसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिविंग में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज होम AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिलांग में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमेरिका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया, जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था, जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर,

0: लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से चार बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई, पांच अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले तीन दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ यह अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಯ ಸಾಯಿ ಬಾಲ್, ಕಜ್ಜಿ ಹುಳುಕಟ್ಟಿ ಸಾಯಿ ಬಾಲ್, ಗುಳ್ಳೆ ಗಜಕರ್ಣ ಸಾಯಿ ಬಾಲ್, ಕೆಸರು ಹುಣ್ಣ ಸಾಯಿ ಬಾಲ್.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಾ? ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ CBS VLR @

0: भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: leak.
1: To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला, जो लाखों बच्चों के भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं.
0: However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the House till 12 noon, then till 12:30, and again till 12:50 p.m. Prime Minister Narendra Modi.

0: Moldovan counterpart, Maia Sandu, in Chisinau. And IMD issues red alert warning for heavy to very heavy rainfall over parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू, विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनोव में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
2: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
3: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला। जो लाखों बच्चों के भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
1: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
4: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटेग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन ए मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे

0: अभी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माई

0: के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मालदोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मालदोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई

0: गली स्कूल की संख्या बढ़ रही है,
1: इससे शिक्षा का स्तर घट रहा है। जानते हो ना, सारे बच्चे तो इतने नसीबवान नहीं होते कि ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कम बच्चे हो, फीस बहुत ज्यादा हो। और एक बड़ा अहम बात है
2: एडमिशन ना।
3: हाँ, जनवरी फरवरी से ही पेरेंट्स फॉर्म के लिए लाइन में रात भर खड़े रहते हैं,
2: फिर भी एडमिशन मिलने की गारंटी नहीं रहती।
1: हाँ, ये बात तो सच है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा पाए, लेकिन कितने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला मिलता है बोलो? कितने माँ बाप पैसे देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं?
3: डोनेशन ना, मैंने तो सुना है कि कुछ माँ बाप कर्जा लेकर डोनेशन देते हैं,
0: फिर यूनिफॉर्म, किताबों के पैसे, पिकनिक, ट्रिप।
1: लेकिन आज की और एक मुख्य समस्या तो आप भूल रहे हो। आपने जो कुछ भी अभी कहा, यूनिफॉर्म, किताब के पैसे, पिकनिक, ये सब ठीक है, लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए आजकल बच्चों को कितना मुश्किल हो रहा है।
0: ಹೌದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 8 o'clock ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಗು 6 ಗಂಟೆಗೆನೆ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ,
3: ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್।
1: ಹಾ ಸಹಿ ಕಹ ರಹೇ ಹೋ, ಸ್ಕೂಲ್ ದೂರ ಹೋ ಯಾ ಪಾಸ್, ರಾಸ್ತೆ ಪರ ಇತನೆ ತರಹ ತರಹ ಕೆ ವಾಹನ ಹೋತೆ ಹೈ ಕಿ ಬಚ್ಚಾ ಬಡಿ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಸೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆ ಘರ್ ಔರ್ ಘರ್ ಸೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಹುಂಚತಾ ಹೈ। ಯಹ ಸಭಿ ಬದಲತೆ ಪರಿವೇಶ ಕಾ ಹಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೈ। ಪಹಲೆ ಜಮಾನೆ ಮೇ ಅಲಗ ಥಾ, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಥಾ ನಾ, ಗುರುಕುಲ್ ಪ್ರಥಾ ಥಿ, खुली स्वस्थ हवा में बच्चे पढ़ते थे। आजकल देखो, बंद कमरे में 60-70 बच्चों के बीच बच्चा पढ़ता है।
0: पहले तो कंपटीशन भी इतना नहीं था,
3: आजकल बच्चों को 80-90% लेने का टेंशन होता है,
0: ऊपर से दूसरे कई क्लासेस भी अटेंड करने होते हैं।
1: यह भी बदलते परिवेश का ही कारण है कि आज बच्चों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अच्छे स्कूल में दाखिला मिलना ही काफी नहीं, उसे 100% अंक भी लेने होते हैं, दूसरे किसी में अपना हुनर भी दिखाना होता है।
3: हाँ, आजकल के बच्चे कोई कराटे सीखता है, कोई मार्शल आर्ट,
0: कंप्यूटर, डांस, गाना, कुछ ना कुछ सीखते ही है ना।
1: हाँ, आजकल के माता पिता की अपेक्षाएं भी बढ़ रही है, वह हर क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इसी कारण उनके पीछे लगे रहते हैं। बच्चा अभी स्कूल जा ही नहीं होता कि उसे ट्यूशन ट्यूटोरियल भेजना शुरू कर देते हैं।
0: अध्यापिका जी, मैं स्विमिंग के लिए जाती हूँ तो वहाँ भी इतनी भीड़ होती है।
1: हाँ, सीखना तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कई बार बच्चों को जबरदस्ती हर क्लास में डाल देते हैं, जबकि उसका उसमें मन ही नहीं होता।
3: कभी कभी उसका असर उनके हेल्थ पर भी पड़ता है ना।
0: हाँ, आजकल के बच्चे जल्दी जल्दी में कुछ भी खाकर पेट भर देते हैं।
1: यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने कहा, बदलते परिवेश में बच्चों के खान पान पर भी असर पड़ रहा है। दाल, साग, सब्जी, फल खाने की जगह
0: बच्चे आज ब्रेड, पास्ता, नूडल्स खाने के पीछे पड़े हैं।
3: दूध की जगह आज कई तरह के जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स ने ली है।
1: सही कह रहे हो, खान पान का भी उनका बदल चुका है। आज का युवा वर्ग अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो देश शक्तिशाली कैसे होगा? पाश्चात्य प्रभाव के कारण हमारे रहन सहन में भी परिवर्तन हो गया है।
3: बड़ों से भी ज्यादा आज विद्यार्थियों में पार्टी, नाच गाना, नशा करना बढ़ गया है।
0: हमारे पूरे विचारों में बदलाव आ गया है।
1: हाँ, पढ़ाई से भी ज्यादा आजकल के विद्यार्थी फिल्मी गाने, पार्टीज, खेलकूद, गेम्स में व्यस्त रहते हैं। हमारी पूरी संस्कृति ही बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, जिसका असर विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है।
3: पाश्चात्य भाषा के प्रभाव से लोग विद्यार्थी वर्ग मातृभाषा में बात करना अपमान समझते हैं। बोलचाल की भाषा सिर्फ अंग्रेजी हो रही है।
0: इतना ही नहीं, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के प्रति उनके मन में वह पहले जैसा आदर नहीं रहा।
1: हाँ, लोग पहले से भी ज्यादा फैशन परस्त हो गए हैं। अपने गुरुजनों, अध्यापकों के प्रति वह सम्मान की भावना अब कम हो रही है।
3: हाथ से लिखने की जगह आज सब काम कंप्यूटर द्वारा हो रहा है।
0: हाँ, ऐसे करते करते एक दिन हाथ से लिखना भी भूल जाएंगे, जैसे पत्र लेखन, ग्रीटिंग कार्ड्स की प्रथा एकदम गायब हो रही है।
3: हाँ, पत्र लेखन आजकल केवल एग्जाम के लिए लिखी और सीखी जाती है। इस ईमेल, एसएमएस की दुनिया में कौन किसको खत लिखेगा, समय भी कहाँ है किसी के पास।
1: सच कह रहे हो, इन सब के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी का असर भी आजकल के विद्यार्थियों पर पड़ रहा है ना। बढ़ती महंगाई के कारण उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को लोन यानी कर्जा भी लेना

0: पड़ रहा है।
1: राजनीति का भी प्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है ना?
2: जी हाँ, आज का विद्यार्थी किसी न किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है, किसी पार्टी के लिए काम करते पढ़ाई छोड़ देता है।
1: ऐसे लोग तो किसी पार्टी के नेता की मदद से अच्छे स्कूल कॉलेज में एक दाखिला भी ले लेते हैं ना?
0: हाँ, असल में सरकार ने तो 18 साल की उम्र में मतदान का हक तो दिया है, लेकिन पढ़ाई पूरी कर शिक्षित होने के बाद ही किसी विद्यार्थी को राजनीति में दखल देनी चाहिए।
2: जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा से आज का विद्यार्थी वर्ग भटक रहा है।
1: हाँ, शिक्षा पाने का एकमात्र साधन वह अपनाता भी है तो वह नौकरी पाने के लिए।
0: हाँ, क्या पढ़ने से, कौन सी शिक्षा पाने से मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, ज्यादा वेतन मिलेगा, इस तरफ ही आज के विद्यार्थियों का ध्यान रहता है।
1: होना भी चाहिए ना अध्यापिका जी?
0: हाँ, क्योंकि आजकल शिक्षा पाने के विविध रास्ते खुले हैं। पहले जमाने में जैसे डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं।
2: हाँ, आजकल के विद्यार्थी के सामने कई रास्ते खुले हैं। कोई होटल मैनेजमेंट करता है, कोई इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनिंग।
1: हाँ, लेकिन 5-6 साल डिग्री पाने के लिए पढ़कर भी क्या सबको नौकरी मिलती है?
2: आसानी से तो नौकरी किसी को भी नहीं मिलती, इसलिए नौकरी पाने न जाने लोग कहाँ कहाँ जाते हैं अपना शहर छोड़कर।
0: एकदम सही कह रहे हो, नौकरी के लिए पता नहीं लोगों को कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, इसीलिए आज के विद्यार्थी में असुरक्षितता की भावना, तनाव का यह एक कारण यह भी है कि इतना पढ़ लिख कर शिक्षा पाकर मनचाहा जॉब नौकरी मिलेगी भी इसका भरोसा नहीं। पहले जमाने में कुछ तो जिम्मेदारी माँ बाप की होती थी, कभी वे अपने पिता के कारोबार को ही आगे बढ़ाते थे।
1: लेकिन आजकल हर एक को शिक्षित होना ही पड़ता है, अगर वे अपना ही बिजनेस संभालते हो तो भी।
0: हाँ, ठीक कह रहे हो, पढ़ाई तो होनी चाहिए, डिग्री तो लेनी ही है।
2: लेकिन अध्यापक जी, आज के विद्यार्थियों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, उसे खुद को प्रूव करना है।
0: हम इसमें हर मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, चैलेंजेस प्रूव करना, इससे भी ज्यादा उसे यह सोचना है कि उसे कितने मौके मिल रहे हैं, शिक्षा के कितने द्वार उसके सामने खुले हैं। अगर वह सही सोच रख के आगे बढ़े तो वह इस पर्दा तनाव से भी बच सकता है। उसे अपनी काबिलियत समझ लेनी चाहिए, आंखों के सामने एक लक्ष्य रखना चाहिए तो वह किसी भी कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है ना? मुझे लगता है इस वार्तालाप से आपको वाद विवाद करने के लिए बहुत सारे मुद्दे मिले होंगे।
1: हाँ अध्यापिका जी,
2: हम एक एक मुद्दे को लेकर उस पर चर्चा करेंगे
0: और फिर आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप बताइए कि अगर आपको उसके विपक्ष में कुछ बोलना होगा तो आप क्या कहेंगे?
3: विपक्ष में भी बहुत सारी बातें हो सकती है, असल में जितनी कि हमने पक्ष के बारे में बोले हैं उससे ज्यादा आप विपक्ष के बारे में बोल सकते हो। सहूलियतें क्या क्या है?
1: जैसे रास्तों में बच्चों का कितना समय चला जाता है।
0: हाँ,
1: एग्जाम पर मानसिक तनाव, बहुत सारे विषयों को सीखने का तनाव, बच्चों में कंपटीशन का तनाव, जितने भी मार्क्स ले लो उन्हें खुशी ही नहीं मिलती।
3: वो जितना भी लेते हैं उससे भी ज्यादा लेना चाहता है, क्योंकि और लोग होते हैं जो उससे भी पॉइंट्स में देखते हैं कि उनसे कितने और मार्क्स मिले। माता पिता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। आप विपक्ष में तो बहुत कुछ कह सकते हो, कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं आज का शिक्षा के लिए, क्या वो जिंदगी में अगर 30 साल तक बच्चा पढ़ता रहेगा तो उसके बाद उतना पैसा वो कमा भी पाएगा कि नहीं वो भी पता नहीं रहता। नौकरी के लिए 1-2 साल उसको शायद घर में भी बैठना पड़े। इन सारे बातों को आप विपक्ष में बोल सकते हो।
1: धन्यवाद अध्यापिका जी।
0: धन्यवाद।
4: राष्ट्रभाषा भारती विशेष हिंदी पाठ कार्यक्रम ಕೇಳಿದಿರಿ
5: ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಜೌಳಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಭಾವಿಸಿದವರು ರತ್ನಮಾಲಾ ಪನ್ನಾಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ರತಾ ಜೌಳಿ

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं चंचल वर्मा। तो चंचल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मंजरी, आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। और जब भी हमारी ये जोड़ी साथ में आती है ना, तो बहुत सारे श्रोता इस बात का कमेंट करते हैं कि दो वर्मा बहनें या दो वर्मा सखियां साथ में
1: हैं। क्या बात है, देखो
2: तो यूं तो हमारी मुलाकात होती है, लेकिन इस मंच पर आज हम वाकई बहुत दिन के बाद साथ में आए हैं।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इससे पहले भी हम लोग कुछ कुछ गप्पे मार रहे थे, तो उसमें भी बड़ा आनंद ले रहे थे कि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की ही बातें चल रही थी, है ना। और आज देखो हम लोग व्यंजन की बात करने वाले हैं।
2: बारिश के मौसम में कुछ खास व्यंजन बनते हैं
1: जी।
2: इसे चाट पकौड़ी और तली हुई चीजों का एक खास मजा होता है खाने का। लेकिन आज जिन व्यंजन की हम बात करेंगे, ना तो वो चाट पकौड़ी है, ना कोई तली हुई चीजें हैं।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन है वो पंजाब के बहुत ऑथेंटिक व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन है, जिन्हें बड़े चाव से बनाया जाता है, खाया जाता है। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता पंजाब के आसपास रहते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं, वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे और रेसिपीज हमें लिखकर भेज रहे होंगे।
1: बिल्कुल, और वो भाई व्यंजन भी तो बता देते हैं कि दाल मखनी और पिन्नी के बारे में हम बात करेंगे।
2: एक है ऐसी सब्जी जो खास मौके पर बनाई जाती है, या पंजाबी घरों में तो आमतौर पर दाल मखनी बनती ही रहती है। और मीठे व्यंजन की बात करें तो हम पिन्नी बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और बारिश के पानी की बचत कैसे की जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
2: हाँ, क्योंकि बारिश का पानी हमें, यानी कि बारिश का मौसम तो होता है सिर्फ 3 महीने के का, कभी कभी 4 महीने भी चलता है, या कहीं कहीं 2 महीने भी रहता है, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे 12 महीने होती है।
1: बिल्कुल,
2: उम्र होती है, और यही पानी होता है जो 3 महीने बरसेगा, लेकिन बाकी के जो और 9 महीने हैं, इसी पानी से हमें काम चलाना है, इसीलिए इसकी बचत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमारे साथी ने भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। और कथा सुधा के अंतर्गत 2 महीने का भाग 3 अंतिम भाग हम सुनाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है ये, तो उससे पहले चंचल एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
3: स्मार्ट कार्ड पड़ी रही अपघात विमे मंगला शिक्षण के तहत सहाय हेरिगे बच्चे सेरिदंते अनेक

0: तो चंचल, कितना प्यारा सा ये गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: गृह प्रवेश फिल्म का बहुत सुंदर गीत था और इसके बाद हम सुनने वाले हैं कहानी। तो कथा सुधा के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने का तीसरा और अंतिम भाग हमारी सखियां और सखा सुनेंगे।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है।
5: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
4: आखिर रामदुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई।
5: 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है।

0: क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी।
1: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे।
2: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी।
1: एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमीक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
0: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढांकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामख्वाह मुझे जलील करते रहते हैं बस।
1: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
3: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है, तो वक्त निकालना पड़ा।
1: रूप कुमारी ने बात बनाई।
0: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
3: जी।
1: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
3: ये घर दीदी इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी, हैं?
1: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली,
0: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
1: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
3: मुझे तो इस घर में ऐसे घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में। सुन रहे हैं आप दीदी?
0: सुन रही।
3: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं।

0: मैं बहुत अदब करता हूँ आपका, आप मेरी दीदी है। हाँ,
1: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है। जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया।
0: दीदी, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। दीदी, आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। क्या? बेटा, बेटा समझती है मुझे। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं। दीदी, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है। जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी, एक मिनट, ये
2: क्या है?
0: थोड़े से रुपए।
2: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। इतने रुपए?
0: दीदी, क्या? ये आपके कदमों का सदका है। मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक हैं, उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन, ईमान, सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है। काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं, हैं? अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हाँ, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी, मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। और मेरी जिंदगी

0: मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना, ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग दीदी। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा मैं भी, और मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
1: उमानाथ ने आगे कहा, अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो, चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली, यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था, कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी, जो तरगीबे कई दिन से अच्छे अच्छे दिलावेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी, वो अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे रहम आया, जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
2: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
1: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
3: सुनो, यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई, मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
1: रूप कुमारी ने उसके तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया,
2: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
3: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
2: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
3: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं।
2: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
3: मगर एक बात तो है।
2: क्या?
3: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
2: हाँ, यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
3: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था, मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
2: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
3: हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा।
2: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए, मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
3: नहीं, वो तो अपनी कार पर थे।
1: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
2: सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ, ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है, उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
4: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर,

सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा, किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15-17-18 इतने मिनट का समय लग जाता है और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
0: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भरकर लेकर आते हैं और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है, तो इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
0: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी, जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते थे।
1: और साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद ले लेती थी,
0: बारिश में भीगने का आनंद भी मिलता था। और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो पाता,
1: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना तो डोर मैट सारे बाहर डाल देते हैं, जल्दी से पानी से धार से पड़ पड़ के इनकी धूल निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है और जैव विविधता को सहारा देता है।
0: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पर हम जंगलों की बात करें जहां पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते हैं।
1: हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और

0: आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
1: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी कि हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं महानगरों में, जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और ये पानी इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
0: बिल्कुल। और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
1: और इसका दूसरा तरीका है ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है, उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
0: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है और गाँव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
1: तो इस बारे में और बात करेंगे लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: आलम।
1: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की। बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि ये जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
2: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है। कण में जो जल और उसका स्तर सुधरता है, इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है, बारिश का वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी के
1: साथ संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है। बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है। उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात करें कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
2: क्या बात है।
1: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
2: कितनी अच्छी बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
1: यानी कि ये तो कोई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती हैं, वो एक अलग चीज़। तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
2: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारे सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं। कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है
1: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने

0: वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो और एक एक बूंद मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना अगर हम ही हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी कि बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे और उससे उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको कह सकते कि भाई आप इस पर आप अपना है मेरा सुन के ना अपना जो उन्होंने लिखा वो अपनी यादें लिखी हैं।
0: और जल संचय अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहां पर और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब पानी जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लेकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
3: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात करेंगे की।
4: तो पिन्नी जो है ना पंजाब का जो व्यंजन है ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा मैदा किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आंच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी बूरा जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें, और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में थोड़ा घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
3: बिल्कुल। और देखो एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च दालचीनी लौंग इलायची प्याज डालिए और भूनिए, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लाल मिर्च पाउडर हल्दी टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए। और इसमें दाल नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी से मिलाइए और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम सर्व कीजिए।
4: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है, क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती?
1: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन जी, साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करने की, वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना,
0: जी जी,
1: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर मसल सी वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं।
0: जी, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
1: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
0: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी,
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जैसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है।
0: जी, और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका।
1: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं।
0: जी,
1: ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है।
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
0: जी जी,
1: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है, ये जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम

0: शुरू होने का डर रहता है। तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
1: जी, बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहाँ फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफ़ी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली

0: पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं,
1: अच्छा,
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है
1: जी।
0: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है
1: जी जी।
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं
1: जी।
0: सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं
1: जी।
0: सो इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव हो सकती है
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है
1: जी।
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है
1: जी।
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है
1: जी।
0: कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बायपास करना सीखना पड़ता है कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बायपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है
1: जी।
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है
1: जी।
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं
1: जी।
0: क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं
1: जी, और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है
0: एब्सोल्युटली,
1: कि कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के,
0: और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार?
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
1: जी,
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है
1: जी।
0: दूसरी बात कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है
1: जी।
0: दूसरी बात है जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
1: जी जी,
0: और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दुलाल,
1: क्या बात,
0: बाजीराव मस्तानी से
1: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है
0: जी।
1: और कुछ कुछ इलाके में जहाँ ज्यादा गर्मी है वहाँ स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी।
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना
0: जी।
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं
0: जी जी।
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड उनकी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन

0: कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है
1: जी।
0: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा तो डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा,
1: इसलिए मत चेकअप कराओ,
0: इसे चेकअप मत करवाओ
1: जी, जी।
0: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है
1: जी।
0: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व का ये हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी।
0: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
1: जी।
0: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है
1: जी।
0: सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं
1: जी।
0: लेकिन एक बात हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है
1: जी।
0: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीज़ों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफ़ी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं
1: जी। जी
0: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा
1: जी। जी
0: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएगी कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसा नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है।
1: ओके।
0: ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है, और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डायट्री रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, लेकिन सब पेशेंट को डायट्री रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बी जैसी चीज

0: ये सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना वो भी सही नहीं है. सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है.
1: जी जी, तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा. तो
0: एक मेरी राय में काफ़ी गलत बातें हैं. एज अ साइंटिस्ट जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है.
1: बिल्कुल.
0: एट द सेम टाइम एवरीपैथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक. बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो. एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है. बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है. ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं वो एक बड़ा प्रश्न है.
1: बिल्कुल.
0: सो इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट.
1: जी, इस तरह की बीमारियां जो होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है. किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
0: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है. इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है. ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है. सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है. जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट.
1: जी जी.
0: जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है.
1: तो उसे पता चल जाता है. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने.
0: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने. सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं, क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर है?
1: यहाँ मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए।
0: जी जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
2: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन, अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
0: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स exactly, ने बोली है exactly. और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं।

0: जरूर।
1: प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
0: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
1: जी हाँ।
0: और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफ़ी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि जरूरी है या जरूरी नहीं है और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
1: जी,
0: अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है, कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फ़ायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
1: जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
0: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतनी हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफ़ी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज़्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की ज़रूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
1: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए?
0: काफ़ी चीज़ें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। जैसे काफ़ी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफ़ी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है। प्लस अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट मिलने लगी है, पहले दवाइयाँ नहीं थी, अभी दवाइयाँ से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
1: जी बिल्कुल।
0: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी, जी।
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: है।
0: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
1: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है?
0: आई थिंक बहुत महत्व की बात आपने कही है।
1: जी,
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
1: जी जी।
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहाँ पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है।
1: अच्छा।
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी

0: दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी, हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है
1: जी।
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है, तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है, तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है, उनको हार्मोन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन,
1: चंचल चितवन,
0: चंचल चितवन,
1: बेहतरीन गाना,
0: अच्छा गाना है
1: जी। मुकेश की आवाज में भी है,
0: आवाज में लता जी की आवाज में भी है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में सुनेंगे,
1: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: सो

0: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर
1: जी,
0: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है
1: जी।
0: सो जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन आवर बॉडी
1: जी जी,
0: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या पोटाशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है
1: जी जी।
0: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है
1: जी।
0: लेकिन यहाँ कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज है जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है
1: जी जी।
0: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है
1: जी जी।
0: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
1: बिल्कुल।
0: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है
1: जी।
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है
1: जी जी।
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं
1: जी जी।
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है।

0: अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है
1: जी, जी।
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है
1: जी।
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं
1: जी जी।
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है
1: जी।
0: सो ये जानना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है, बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है
1: जी, जी।
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है
1: जी।
0: सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है
1: जी।
0: और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है
1: जी, जी।
0: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है
1: जी, जी, जी।
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सो सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है
1: जी।
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है
1: जी, जी।
0: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको। जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन, यहाँ दो तीन चीजें हैं। ऑफकोर्स लाइफ स्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं
1: जी। मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर
0: जी।
1: तो अब डॉक्टर साहब, चलते चलते

0: ते गाना आपकी पसंद का सुनवाए, कौन सा गाना?
1: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
0: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज़, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे।
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर बड़ा शब्द है लेकिन मॉडर्न टाइम में काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज़्यादा देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफ़ी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है, अगेन राइट टाइम में डिटेक्शन होना ज़रूरी है
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती हैं, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए आप एक्सपर्ट को पूछिए।
0: जी।
1: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है। आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ वी ऑल नो। और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों

0: एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: President Drobdy Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks

0: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त

0: करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारिसिस फ्रेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीति

0: राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और राजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा, समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई

0: खत्म करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ

0: को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। मान्य सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल प्रश्न नंबर 1 धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर 1
2: प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के बोरिया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत को जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहां से लेंगे? मोदी जी ने फ्रांस फोन लेवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने के। दूसरा अपन दिलवाते हुए गुलामी को मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सब से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, संस्थान के रूप में,

कार्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनोस्क्रिप्ट है। वो मैनोस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, रिजल्ट पीजीपी में ठीक करने के लिए, रिसर्च जीवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट

0: ने कहा है कि अब कोई मौका लेंगे जो भी कोई जो मैनिस्ट्रेट होगी उसको भी सामने कमेंट करके उससे भी उसके बिल्कुल संशोधन करा जाएगा और विजिट लाइट करा जाएगा।
1: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
3: ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಸತ್ ಸದನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಕೇಳಿದಿರಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದೀಗ ಗೀತ ಚಂದ್ರಿಕೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗೀತಚಂದ್ರಿಕೆ ಮೆಲೋಡಿ ಟೈಮ್, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की।

0: इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी कार्यवाही